0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 106.2 The Beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पांच? पांच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
2: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग।
6: Yeah, check it out.

0: Fatma.
1: Millennials Unite. Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
1: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: cari pawan.
1: Dek.
2: Yeah, check it out.
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
5: दो या चार?
4: चार।
5: कब तक वापस लौटेगा?
4: यूं ही यहीं? 4-5 दिन में?
5: चार या
4: पांच?
6: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: 2 या 4? 4।
3: कब तक वापस लौटेगा? यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: 4 या 5? 5।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2 The Beat of Bollywood. Aap sun rahe hain Big 106.2 The Beat of Bollywood.

बजे सिर्फ बिग 106.2 पर. और कुछ स्क्रैप्स, MSN चैट्स एंड बॉलीवुड बैंगर्स. इट्स योर ऑडियो टाइम मशीन. दिस इज द बिग मिलेनियल वीकेंडर ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2.

0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lalsa, 26th September at The Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
5: Yeah, let's go.
0: The big weekender, the biggest Bollywood hits non-stop
5: hits.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: Now listen. Get up. That's right.

ऑल्सो 39 कुणाल खेमू ने इसे लिखा है, डायरेक्ट करा है, प्रोड्यूस किया है एंड इज ऑल्सो एक्टिंग. Fantastic reviews. In fact, I saw the movie. The movie totally is a vibe. This week on number 39. कुणाल खेमू का स्टाइल इज वेरी वेरी डिफरेंट, बट उनकी पहली मूवी मडगांव एक्सप्रेस वाज फैंटास्टिक एंड सो इज वाइब. कुणाल खेमू विल गिव अस सम मूवीज टू रिमेम्बर, सो इफ यू हैव नॉट मेड एनी प्लान्स दिस वीकेंड यू कैन गो एंड वॉच वाइब. आई गारंटी यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. नंबर 40.

ऑलरेडी अवेलेबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक एप्पल टीवी. अब आप उसमें स्ट्रीम कर सकते हैं. वेलकम टू द जंगल, द बिगेस्ट एंसेंबल एवर, ऑल्सो मार्क्स द रियूनियन ऑफ रवीना टंडन एंड अक्षय कुमार. Playing in the top 40 biggest hits of the week. Ye hai Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. And moving on to number 34. Main hamesha kehti hoon ki this album and this song is here to stay. Even years later, if you have a curated playlist, usme Satinder Sartaaj and Jasmine Sandler's ki awaaz mein ye gaana 100% hoga.

0: 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
1: Happy, happy weekend. I hope you're enjoying your weekend. मैं हमेशा कहती हूँ weekend पे कुछ ना करना is the best plan ever. फिलहाल मेरा plan हर weekend होता है आपको top 40 biggest hits of the week सुनाना. This is the Big Bollywood Countdown. Moving on to 26. A movie that I so wanted to see but... I'm very lazy. मुझे इतनी आदत हो गई है ना कि OTT पे सारा कंटेंट कंज्यूम करने की, which is so bad. I miss going to the theaters, enjoying the movie with गरम गरम पॉपकॉर्न and the सीटिया and the तालिया. And this movie deserves all the सीटिया, all the तालिया. मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की. The movie has become a massive commercial success. In fact, मिर्जापुर द मूवी की वजह से जो मूवीज उनके साथ रिलीज हुई थी इंक्लूडिंग हैवान इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए. मिर्जापुर has become the fourth highest grossing Hindi film of 2026 and the 10th highest grossing Indian film of the year overall. Excel Entertainment की सबसे बड़ी रिलीज so far इस हफ्ते मिर्जापुर से.

0: श्रेया घोषाल रोमी की आवाज। इसी के साथ ऑन नंबर 25 एक और गाना जो ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ किया है, लिखा गया है रोचक कोहली एंड आदित्य रिखारी विद दिस वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो।
1: जिन्नी सोनी लग दी है मनु किसे हो ना लगे।
0: दिस वीक ऑन नंबर 25।
2: नंबर 26।

0: म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने, गाया भी हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल एंड निहाल ने है, हु इज अ फॉर्मर इंडियन आइडल कंटेस्टेंट एंड टिपिकल राष्ट्रीय वाली फील्स है इस गाने में. विल टेक यू बैक टू हम आपके हैं कौन, प्रेम रतन धन पायो डेज, इस हफ्ते ऑन नंबर 23.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
2: अलरस कहाँ है? कहाँ है अलरस?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
2: चलो चले अलरस.
4: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lal Sa, 26th September at The Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.

0: धुरंधर टू के एटलीस्ट 6 गाने ऑफकोर्स हमारी प्लेलिस्ट में होते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट द टॉप 40, बिकॉज इतनी धमाकेदार एल्बम है ये. इस हफ्ते भी ऑन नंबर 19 जैस्मिन सैंडलेस, एंड ऑफ कोर्स ऑन नंबर 18. मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपका वक्त आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, एंड द बिगेस्ट एग्जांपल इज रवि किशन. ही इज एवरीवेयर, फ्रॉम मीम्स टू मूवीज टू ओटीटी शोज टू सॉन्ग्स. द सॉन्ग इज कॉल्ड मनी फॉलोज दिस वीक ऑन नंबर 18.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

0: Number 18.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम? नाम
2: मनी फॉलोज माय ब्रदर।

0: जो डर गया समझो मर गया, इनका सामना करो, तुम आगे बढ़ती रहो और इन्हें
1: नंबर 15.

इसी के साथ ब्रांड न्यू एंट्री एंड सीधा नंबर 11 हैज टू बी तमन्ना भाटिया. आई थिंक पोस्ट आज की रात एवरी सिंगल मूवी एवरी सिंगल वेब सीरीज वेदर तमन्ना इज अ पार्ट ऑफ द मूवी और नॉट इंक्लूड्स तमन्ना भाटिया का एक हाई एनर्जी डांस नंबर. दिस वन इज फ्रॉम V1 जो रिलीज हुई है इस फ्राइडे 25th of September को. द गाना इज कॉल्ड देवनागी अकाशा सिंह की आवाज. अगेन कंपोज किया है तनिष्क बागची ने. फैंटास्टिक मूव्स कर्सी तमन्ना भाटिया. नंबर 12.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2 पर इट्स टाइम फॉर द बिग बिंज, वो शो जो वीकेंड का आपका हार्ड अर्न टाइम बचाता है, क्योंकि हम लोग की एक आदत है, बहुत बुरी आदत है, बहुत ही नेसेसरी आदत है, बिकॉज जब वीकेंड आता है यू नीड टू रिलैक्स अ बिट, एंड रिलैक्स करने में नंबर वन चीज़ जो हम लोग करते हैं वी वॉच OTT सीरीज, OTT कंटेंट, राइट? लेकिन क्या देखें क्या नहीं देखें, स्पॉइल्ड फॉर चॉइस वाली बात है कि यू नो यू गेटिंग सो मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिव्यूज फ्रॉम एवरीवेयर. तो एक काम करो, इस काम को आप आउटसोर्स कर दो. दैट्स व्हाट दिस शो इज ऑल अबाउट. आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट ओवर द नेक्स्ट 2 hours ए पर्टिकुलर थिंग दैट पीपल कैनॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट. स्पॉयलर अलर्ट, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेटिंग है या इज दैट शो ऑन Amazon Prime. सो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऑल दैट मच मोर कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

बिग 106.2 पर दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट Amazon Prime का लेटेस्ट शो, इट्स कॉल्ड वेटिंग है। नाउ कभी भी अगर आपने लाइफ में, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी नहीं किया होगा ये, कि इंडियन रेलवे की तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की, आप समझ जाएंगे द हॉरर एट द सेंटर ऑफ दिस शो। वेटिंग है फॉलो करता है दो लोगों को ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मैसिव रेलवे टिकटिंग स्कैम। दिव्येंदु प्लेज सुगम मिश्रा, जो कि एक यंग रेलवे कॉप है, इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन रेलवेज। जहां पर भुवन अरोरा ऑन द अदर हैंड ही प्लेज हमजा, जो कि स्मार्ट यंग हैकर है, हु डिस्कवर्स अ वे टू मैनिपुलेट द बुकिंग सिस्टम। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट यार, मतलब जो टिकट बुकिंग सिस्टम होती है, मोस्ट थिंग्स आर ऑन एन ऑनलाइन डेटाबेस, और इसको अगर आपने हैक कर दिया देन you're pretty much through, that's your key to making a lot of money, right? That's what Hamza is looking for. Now, what starts with one confirmed train ticket slowly becomes a nationwide racket. That's what the show is all about. 7 episodes hain, bahut sara Bihari flavor. If you love that, you're going to love this show. Humor hai, cops hain, touts hai, technology hai. And honestly, jiska premise hai, it is very, very clever. Lekin, achha premise se kya hota hai? Does it have enough legs to sustain 7 episodes? That is the question. The good things, the bad things, and finally the verdict ke waiting hai, dekhein ya skip karein, all that and much more coming up on The Big Binge with me, Sid.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

Big 106.2 पर this is the big binge with me Sid and we're talking about waiting है ये Amazon Prime की latest 7-part series है. It's time to talk about all the good things about the show. What I really liked about the show is the fact that इसकी जो दुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा familiar है, बहुत relatable है. जब ऐसा होता है, it is a massive tick at least for me in the right box, right? किसी ने भी और किसने नहीं किसी स्क्रीन को स्टेयर किया है जिसपे WL73 लिखा हुआ है. इंडियन रेलवे टिकट की दुनिया में अगर आपने ऐसा किया है, वेट लिस्ट पे कभी आप गए हैं तो आप इंस्टेंटली समझ जाएंगे व्हाई पीपल वुड पे एनीथिंग फॉर अ कंफर्म्ड सीट, राइट? दैट्स व्हाट द शो इज ऑल अबाउट. दिव्येंदु इज वेरी लाइकेबल एज सुगम, स्लाइटली नाइव, थोड़े से ऑकवर्ड, एंड ही इज डिटर्मिंड टू प्रूव हिमसेल्फ. किसी भी कॉर्पोरेट दुनिया की तरह इंडियन रेलवेज के सिस्टम में वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, विच इज वेरी वेरी लाइकेबल. ऑल्सो भुवन अरोरा प्लेज हमजा, इक्वली अच्छी परफॉर्मेंस है, एंड ही इज नॉट सम ईविल मास्टर माइंड. वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ब्राइट बंदा है जो कि सिस्टम का एक लूप होल डिस्कवर करता है, एंड देन ये भी डिस्कवर करता है कि ये जो लूप होल उसने डिस्कवर किया है वो कितनी बड़ी डिस्कवरी है, हाउ वैल्यूएबल इट कुड बी, हाउ मच मनी इट कुड अर्न हिम. सपोर्टिंग कास्ट इज एब्सोल्युटली एक्सेलेंट. कुमुद मिश्रा, सुनीता राजवर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन. इट नेवर बिकम्स दिस वेरी ड्राई साइबर क्राइम का प्रोसीजरल, राइट? सो कॉमेडी है, इमोशन है, सस्पेंस है, टू कीप द जर्नी एंटरटेनिंग. लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं शो के बारे में. कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

0: सकता हूँ मैं ना।
1: क्या कर सकता हूँ?
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

Big 106.2 पर this is the Big Binge with me, Sid, and we're talking about waiting है Amazon Prime की 7-part series. It's now time to talk about the not so good things about the show. According to me, is the disclaimer star conditions apply. Now, मेरे हिसाब से problem with waiting है is कि इसका जो idea है ना, it sometimes becomes better than the entire series. कितनी बार आपने ये देखा है किसी series के साथ यार, जो आपने वादा किया था ना, उस वादे पे आप खरे नहीं उतरे हो. ये काफी बार होता है इस शो के साथ. पहले कुछ एपिसोड्स दे वेरी फन, क्योंकि डिस्कवर कर रहे होते हैं कि यार ये जो रेलवे सिस्टम के स्कैम है, ये कैसे काम, हाउ डू दे एक्चुअली वर्क. दोनों साइड्स जो हैं दे स्लोली मूव टुवर्ड्स ईच अदर, सो इट्स क्वाइट फन. लेकिन कहीं शो के बीच में ना उसका मोमेंटम जो है वो लूज होने लगता है. कुछ ज्यादा ही साइड ट्रैक्स हैं. साइड ट्रैक्स आर गुड, लेकिन जरूरत से ज्यादा देन इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ फैमिली ड्रामा. एंड देन व्हेन देयर इज फैमिली ड्रामा, वो एकता कपूर टाइप का कहीं देखा देखा सा शो लगता है. इन्वेस्टिगेशन भी जो है डजंट ऑलवेज फील एज टेंस एज इट कुड हैव बीन. एंड फॉर अ शो दैट्स बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे टिकट स्कैम्स, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी हाई होती हैं कि यार स्टेक्स हाई होंगे, इट्स गोना गेट यू नो कीप गेटिंग बिगर. लेकिन ऐसा होता नहीं है. ओकेजनली इट फील्स strangely very small, and by the time आप final episodes में पहुंचते हो the payoff is decent. ऐसा नहीं कहूंगा कि खराब payoff है, लेकिन उतना explosive नहीं जितना कि हम expect कर रहे थे. So अच्छा idea, great idea I'd say, बढ़िया performances, लेकिन it could definitely have been tighter. तो भाई ज्ञानबाजी बहुत हो गई, अब बताओ कि मुद्दे की बात क्या है. Stream it or skip it. वेटिंग है, देखें कि नहीं देखें इस वीकेंड पर. कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग बिंज विद मी सिड.

Big 106.2 पर this is the Big Binge with me Sid. It's now verdict time. We're talking about waiting है Amazon Prime का ये 7-part show. इसको देखें कि नहीं देखें, stream it और skip it. बहुत ज़्यादा विचार विमर्श के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं that you should actually stream it. You know, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि बड़ी मुश्किल से अच्छा आइडिया मिलता है, हाँ, और उस अच्छे आइडिया की वजह से आपको इस शो को देखना चाहिए, नॉट बिकॉज इट्स सम मास्टरपीस. देखो, क्या एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो करोगे तो अच्छा रहेगा आपका एक्सपीरियंस. हाँ, बेसिक आइडिया जेन्युइनली फ्रेश है, वर्ल्ड फील्स वेरी वेरी इंडियन, वेरी फेमिलियर, एंड दिव्येंदु और भुवन अरोरा का जो परफॉर्मेंस है, दे मेक दिस 7 episodes वेरी ईजी टू स्टे विद. आपका एक भी बार मन नहीं करेगा कि मैं यू नो फ्लिप कर लूँ या बीच में से शो को छोड़ दूँ. हाँ, कुछ जगहों पर द शो ड्रैग्स, एंडिंग कुड हैव बीन मच मच बेटर, इट कुड हैव लैंडेड हार्डर, लेकिन काफ़ी ह्यूमर है, इनफ सस्पेंस इन द शो, एंड कैरेक्टर्स भी अच्छे हैं टू मेक योर राइड टोटली वर्थ वाइल. अनलाइक जो बाकी गैंगस्टर शोज होते हैं, मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं, ये जो शो है इट इज बिल्ट अराउंड समथिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी इंडियन अंडरस्टैंड्स. Confirmed train ticket cut desperation. So if you want something light, different, easy to binge this weekend, I would recommend Waiting Hai. So the Big Binge verdict is stream it. This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी